0: मोहब्बत के जो दिल वाओ द टू लव बर्ड वेरी वेरी मस्टी ऑन ये बात
1: तू प्यार मुझसे
0: Greetings to Jumpy Photo from Grove and the Reservoirs, Jumpy Jack and the Reservoirs.

अरे क्या बात है, मेरे चर की जवानी तक के तू मुना मोर, माय पीकिंग यूथ रिटल्स विथ एंटिसिपेशन, डू नॉट टर्न योर फेस अवे.